सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई। गुरमत लेहो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत ले

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टिय गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जोग जोग।

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मार गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आ

मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्द ही सब

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है, गुरमुख ना

रहे हैं। आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

सहजे गुण रहै दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

है। मान प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

उपदेश तुट है सब बंधन, यह परम मोह पर जालना। जहरा खै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पलमाना।

सच शाह अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोलै पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर लै करण कारण समर्थ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै क्या मानस डोलै गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोलै।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरै। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करै। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन।

आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा मह मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया हाथ खड़

दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ है।

यो अड़सठ सुरसरी हम मूर्ख को हर कृपा करी जन नानक तारे ओ तारण हरी पैरों महला चौथा सोकृत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जप हो बनवाली कर कृपा मिल हो सतसंगत टूट गई माया जम जाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्धा हर पाली।

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ, जम मार्ग कै संगी पांथ, गंगा जल गुर गोविंद नाम,

रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह मन मुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भव जल फेरा।

पंजवां निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचय नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सत

निज घर वासी हम सुख पाया ता सब है सुहेले गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सद ही निचल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर।

गुरमत खोज परे तब पकरे तन साब तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरुष।

ओडा कूप गोज खिन काढ है, जो ओडा कूप गोज खिन काढ है त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

निस्बासर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों, अन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

ताई नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु तूर दे हर पार लंघाई मलार महला चौथा तिस जान को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा।

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलया सुख पाइय सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन ए प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले, प्रम प्रम फूल तोरावै, निर्जियो पूजह मड़ा सिरे वह, सब बिरथी काल गवावै, ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए।

अनक बार भ्रम है बहुजोनी, एक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंग है कत सागर, कागर नाव लंग है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

कान हर बरस सगल जग छाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

पद त्यो धारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरनाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

जीवना, हर जपयो हर गुरमंत, हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत, हर आपे घट घट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत, हर आपे सब रस

प्रभाती महला पहला निवली कर्म पुहंगम पाठी निवली कर्म पुहंगम पाठी रेचक पूरक कुंभ करा दिन सतगुर

सेल पूजस चक्र गणेशं सेल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत परवेशं पग नाचस।

राम उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नहें।

सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासों संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निध बस है जिस सदा कर।

मनोरथ कोए ना पूरयो चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है न।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जान श्री पतनाथ।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम।

ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਿਨਾਸੀ

भुयंगम सर्प है जग के रिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है गुरगरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

सतगुर मिलाए होमे तजै विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुर

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता, तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रहे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तरप तवले आकाश, सुने दीप लो पाताल सुने पोह न सके काल। नानक भगता सदा विदास सुने दुख पाप का नाश, सुने ईश्वर बर्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद, सुने जोग जुगत तन पेद सुने शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश, सुने सत संतोष ज्ञान सुने अथट का स्नान, सुने पण पड़ पावे मान सुने लागे सहज ज्ञान। नानक भगता सदा

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारह कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन पीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन न अंत अंत न देखन सुनन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप कुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केत्या दुख फूक फद मार, ए वे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए को आखन पाए, ओ जाने जेतिया मोय खाए, आपे जाने आपे दे, आखे सेवे कई के, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल पंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूल ला समाहे, अमूल कर्म अमूल दीबान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फुरमान, अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्यान, आखे बरमे आखे इंद, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेव, केते आखे आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे, ता आख ना सके केई के, जेवड पावे तेवड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विदार, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा के तेवा मनहारे, केते राग परिस्यों कहियन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा तर्म द्वारे, गावे चित गुपत लिख जाने, लिख लिख तर्म विचारे, गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे, देवतियां दरनाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंगत पढ़न रखी सर, जुग जुग वे दानाले, गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पयाले, गावन रतन उपाय तेरे, अथक तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे धारे, से तुदनो गावे जो तुद भावन, रस्ते तेरे भगत रसाले, होर के ते गावन से मैं चित ना आवन।

भासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भासी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत किंथा काल पुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद संजोग विजोग दुर कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होए लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक राय पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े फीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती छित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के

कौन पंत परवान, नदरी करम पवै निशान, कछ पकाई उठे पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिए, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पाप नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिते नाद विनोद कोड आनंद, धर्म खंड की बाणी रूप, तिथे कार्त करिए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिए सुरा सिदा की सुद्ध, कर्म

नानक नाम है बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन सुरमस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत।

करिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। रागा समय

का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक परें बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुझ आपे सिर्ष सब उपाय जी तुझ आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जन होई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार में

विष्णु कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला चित सर्वरण पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतक मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिनको ना ही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंग जाम लागे पव जल करन के जन्म बिरथा जात रंग

आओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देवो सज्जन आस

छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, हो कर राख वडाई तोए, रहाओ रिश्वे चस्या गड़िया पहरा, थित्ती वारी माओआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेश, राग तनाश्री मैला पहला, गगन में थाल रल चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, रूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राए फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए, पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी राव, सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, किस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनों मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा, रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आउद कटे दिन सुरैनारे, मन गुरु मिल काश सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पा

आओ मत देख फूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया।

संग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै साल वाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने न पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब एक तू होर जिया के तेलो, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच

पर निंदा परमल मुख सुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले और के कहन वखान तिन